मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

0: बाकी सब गंगा।
1: हर पल जिंदगी का बस दुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है, वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

वेलकम बॅक. मित्रांनो, पंकज उदास यांनी गायलेली आणि संगीतबद्ध केलेली यानंतरची गझल आहे जफर गोरखपुरी यांची. तत्पूर्वी एक शेरो शायरी आपल्या समोर. चेहरे हजारो है मगर अपना कोई मिलता नहीं, कंधे से कंधे मिलते है दिल से कोई मिलता नहीं, पास सभी दिखते है मगर दिल कोसो दूर ठिकाना है, भीड़ मिली हर मोड़ मगर कैसा यह जमाना है, तस्वीरें हस्ती है मगर आंखों में वीरानी है, चेहरे पर उत्सव है मगर भीतर एक कहानी है, पल पल को तस्वीरों में दुनिया को दिखलाना है, जीना कम दिखाना ज्यादा कैसा यह जमाना है, संपर्क हजारों है मगर संवाद कहीं मिलता नहीं, शब्द बहुत हैं होठों पर मन कोई पढ़ पाता नहीं, लफ्जों की इस बारिश में एहसास बचाना है, कहने वाले लाख मिले कैसा ये जमाना है. खूप मोठी गजल आहे ही. या गजलचा आणखीनही पुढचा भाग जो आहे तो आपण ऐकणार आहोत. आता आपण ऐकूया पंकज उदास यांनी गायलेली जफर गोरखपुरी यांची गजल.

वेलकम बैक। तर एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। बघा कशा प्रकारचं वर्णन जफर गोरखपुरी यांनी आपल्या गझलमध्ये केलेलं आहे। आता यानंतरची गझल ऐकण्यापूर्वी तुमच्यासाठी एक शानदार शेर ओ शायरी, अर्थात आधीची जी गझल आहे त्याच गझलेचा आता पुढचा भाग आहे। कमरे बड़े होते गए, दिल और सिमटते जाते हैं। कमरे बड़े होते गए, दिल और सिमटते जाते हैं। सामान बढ़ा है घर घर में, सुकून घटता जाता है। सुविधा के इस मेले में चैन कहाँ से लाना है। सब कुछ घर में आ पहुँचा, कैसा ये ज़माना है। माँ राह निहारे आज भी, बेटा मगर मसरूफ बहुत। बाबूजी कम ही कहते हैं, आंखें कहती है बहुत। जिन हाथों ने वक्त दिया, उनको वक्त न दे पाना। उम्र मिली जिन हाथों से, कैसा ये ज़माना है। बच्चे बड़े होते गए, बचपन पीछे छूट गया। सपनों का कद बढ़ता गया, आंगन छोटा होता गया। कल की ऊंची उड़ानों में आज कहीं खो जाना है। पंख मिले पर खेल गए, कैसा ये ज़माना है। जीवनाचं सत्य, जीवनाचं वास्तव, आजच्या जीवनामध्ये मनुष्याची काय अवस्था आहे हे या दीर्घ गझलमध्ये सांगितलेलं आहे। पुढचाही भाग आहे, परंतु आता आपण ऐकूया कतील शिफाई यांची गझल। गायक आणि संगीतकार अर्थात पंकज उधास, आज या कार्यक्रमात आपण पंकज उधास यांनीच गायलेल्या सर्व गझल ऐकत आहोत। तेव्हा आता ऐकूया घुंगरू टूट गए ही गझल।

वेलकम बॅक बजमे शायरी, यामध्ये आपण शेरो शायरी आणि सोबत पंकज उधास यांनी गायलेल्या गझलचा आनंद घेत आहोत. तेव्हा जी गझल मी सांगत होतो त्याचा पुढचा भाग आता ऐकूया. रिश्ते बहुत बनते है मगर सब्र कही मिल पाता नहीं, रिश्ते बहुत बनते है मगर सब्र कही मिल पाता नहीं, मैं इतना ऊंचा हो बैठा हम नजर कहीं आता नहीं, झुकने में जो प्यार छिपा उसको हार बताना है, मैं बचता है हम मिटता है, कैसा ये जमाना है. चाहत वही दिल वाली है अंदाज बदलते जाते हैं, दिल आज भी वैसे टूटे बस राज बदलते जाते हैं, मिलना जितना आसान हुआ निभना उतना मुश्किल है, दिल अब भी नाजुक शीशा कैसा ये जमाना है. दौलत बढ़ती जाती है हसरत बढ़ती जाती है, मंजिल मिलती जाती है मंजिल फिर बदल जाती है, कल को बेहतर करने में आज ही रोज गवाना है, जीने की तैयारी में कैसा ये जमाना है. बघा मित्रांनो, या गझलच्या या भागामध्ये मनुष्य किती लालची झालेला आहे, हावरट झालेला आहे, याचंच वास्तविक चित्रण, शब्द चित्रण या गझलच्या भागात केलेलं आहे. तेव्हा आता आपण ऐकूया मुमताज.

भगवान तीर्थंकर परमात्मा सुधर्मा स्वामी तीर्थंकर परमात्मा सुधर्मा स्वामी को साधना के उन सिद्ध साधकों के साधना के गहरे रहस्य प्रदान कर रहे सुधर्मा स्वामी तीर्थंकर परमात्मा से प्राप्त अंतिम सांस में जिन्होंने सिद्धि का वर्णन किया उन साधकों को वंदन कर रहे हैं। हम भी उन सिद्ध साधकों को वंदन करने के लिए प्रभु के वरदानों को सुधर्मा स्वामी ने जिन लब्धि अक्षरों में निबद्ध किया उन अक्षरों का भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अवभाव पूर्वक अनुभूति में तन्मय होते हुए गान श्रवण स्मरण समर्पण करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। धम्मम शरणम पवज्जामि स्वीय धम्मम शरणम पवज्जामि चरिय धम्मम शरणम पवज्जामि। इन्हीं अनुभूतियों के साथ आसन ग्रहण करें। आपके आगम के प्रति की यह श्रद्धा पुरुषन पर्व के प्रति आपकी यह सजगता दिल को गहरे तक छू जाती है और ज्यादा गहराई से वो मुझे टच कर जाएगी। यदि आप जिनके बिना आए हैं उनको कल से साथ में लेकर के आओगे, है ना? आपको पता है ना आप खिचड़ी कब तक आंच पर रखते हो? हेलो, आप खिचड़ी गैस पर कब तक रखते हो? हाँ, जब तक वो जब तक तुम मेरी बात को प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक मैं डोस देता ही रहूंगा। एक अनूठा पन्ना सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें और इस बात को स्वीकार करें। हेला ऐसा कर थोड़ा सा, एक बात को स्वीकार करें कि जैसे गस कुमार के 99,99,000 999 जन्म का वैर होता है, वैसा हम सभी का किसी न किसी के साथ करोड़ों भवों का वैर चलाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि बिना कारण का ये मेरा दुश्मन बना हुआ है, मैं तो प्रेम कर रहा हूं, मैं तो सौहार्द भाव से रह रहा हूं और सामने वाला मेरे प्रेम का मेरे सौहार्द भाव का मिसयूज कर रहा है, समझ जाइए। उस समय गस कुमार को याद करिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है। उस समय अपना माथा गर्म हो जाता है। यस और नो? यस। ऐसा लगता है कि
किसी सौंदले ब्राह्मण ने गजकमाल के सिर पर आकर के जैसे अंगारे रखे हैं, वो सिर पर रखे थे, ये सिर के अंदर अंगारे आ जाते हैं। लेकिन उस समय में संभलना बहुत जरूरी है। यदि उस समय संभल गए तो लंबे समय में से चला हुआ वैरानुबंध तुम्हें मुझे सिद्ध बना देगा, और उस समय नहीं संभले तो वैरानुबंध पुनः उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। आई रिक्वेस्ट माई सेल्फ, मैं मेरी स्वयं से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि गजकमाल का ये पन्ना केवल मेरे बुद्धि में ना रहे, केवल मेरी जुबान पर ना रहे, वो मेरे जीवन में आ जाए। और जैसी मैं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, वैसे ही आपके लिए और संसार के सभी जीवों के लिए मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें कि गजकमाल के इस पन्ने की आराधना करते हुए अनजाने में जो वैरानुबंध चले आ रहे हैं, आज उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। संसार का हर जीव इस वैरानुबंध से मुक्त हो जाए। बिना वैरानुबंध से मुक्त हुए मुक्ति नहीं मिलती है। चाहे जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितना स्वाध्याय कर लो, चाहे जितना दान कर लो, चाहे जितनी सेवा कर लो, चाहे जितना लोगों के सामने स्वयं को ग्रेट पेश करो, लेकिन जब तक वैरानुबंध से मुक्त नहीं होते, अक्ल नहीं आती, सिद्धि नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, शांति की अनुभूति नहीं होती, दुखों का अंत नहीं होता है। गजकमाल बाहर के स्मशान में है, हम अंदर के स्मशान में है। एक बार चेक कर लो आराधना शुरू करने के पहले, क्या मेरे अंदर ये वैर का स्मशान नहीं है? गजकमाल बाहर के स्मशान में, हम अंदर के स्मशान में, और ये हमारा वैरानुबंध ही वो सुमिन ब्राह्मण को खींच करके लाता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं, और इस जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें और मुझे, मुझे और तुम्हें वैरानुबंध से मुक्त कर दे। लेट मी रिपीट, सच्ची मुक्ति वैर से मुक्ति है, घर से मुक्ति पाखंड है। यदि वैर से मुक्ति नहीं हुई तो घर से मुक्ति पाखंड है, और वैर से मुक्ति हो गई तो घर की मुक्ति सौभाग्यशाली है।
ये पुरुष ना कल्प के आराधना के लिए जिस आस्था, जिस भक्ति, जिस अवभाव से आप समर्पित होते हो, मेरी रोम रोम से तुम्हारे लिए स्पंदना है कि अंत गढ़ के वरदान तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ गस कमान की दीक्षा हो चुकी मूल पाठ में। अभी हमारे रस में उसकी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन मूल पाठ में दीक्षा हो चुकी है। तैनम से गैस कुमाले अनगारे जमचे व दिवसम पवय तस्य व दिवस पुआवरण काल समय से जेने वारे टने में तेने वो आगछई मरिटने मिम दिगुतो आया हिनम पया हिनम करे करिता। जब भी आया ना पाठ दिगुतो आया हिनम पया हिनम करे करिता वंदय वंदेता नमसे नमसेता, उसे महसूस करो कि मैं तीर्थंकर को प्रदक्षिणा कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर को वंदन कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर को नमन कर रहा हूं।

சமானே அறமருட்டனேமே வந்தை நமசை வந்தித்தா நமசித்தா அறவோ அரிட்டனேமே சாந்தியாவோ சம்பவனாவோ உஜானாவோ படி நிக்கமே படி நிக்கமித்தான் ஜெயதேவ மகாகாலே சுசானே தேனே வாகச்சி வாகச்சித்தாம் தண்டிலம் படிலை படிலைத்தா உச்சார பாசன பூமியும் படிலை படிலைத்தா இசீம் பபாரகயேனம் காயேனம் இசீம் பபாரகய காயேனம் பொலியே இசீம் பபாரகயேனம் காயேனம் இசிம்பபாரகய காயேனம் कि रस में इसका जिक्र नहीं हो पाएगा इसलिए अभी उसका विवेचन कर देता हूं आपके साथ। ईषत प्रांग भरा प्रांग भार ईषत सिद्धशिला सिद्धशिला कैसी है जैसे दूध की चांद की कोर है उस दूध की चांद की कोर के समान गस कुमार ने अपनी काया को बनाया है। ये आगम के बहुत गहरे सीक्रेट है। श्रावकों की 11 प्रतिमा की साधना कर रहा है इस समय उसके शायद 8वीं या 9वीं प्रतिमा चल रही थी और उसमें ध्यान में खड़ा होना होता है रागधर। उसने आकर के पूछा कि दिक्कत जा रही है। मैंने पूछा कैसे खड़े रहते बोले सीधा खड़ा रहता हूं बोले नहीं अगम कहता है इसीं पभार गए नम काये नम जैसे सिद्धशिला है जैसे सिद्धशिला का बेंड है ऐसे अपनी काया को हल्का सा उसको कहते ईषित पभार गए नम काये नम ये साधना आपको केवल जैन आगम में ही मिलेगी बाकी सब तरफ तो आपको वो एक ही कहा जाता है गर्दन सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी ये अंतगढ़ सूत्र है इसको कहते ईशिम पभार गये नम काये नम तेनम तस्स गयस्कुमारस अनगारस्ततम उज्जलम आया

0: अभी बोलू बाद में बोलू, अभी बोलू बाद में बोलू, अभी बोलू, मैं कर रहा हूं आप भी करो, मैं कर रहा हूं बोलते हुए आप भी करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें उद्विग्न किया है, वो तुम्हारा उपकारी है, वो तुम्हारा सहयोगी है। क्यों? क्यों कि तुम्हारे अंदर का जो वीरानु बंद है, एक जीव के साथ नहीं है, बहुत जीवों के साथ है। उसने शुरुआत कर दी वीरानु बंद को समाप्त करने की। कीजे ओपनर उद्घाटन कर रहे हो, और उस फल में तुमने दिए मूल्यांकन किया, मैंने दिए मूल्यांकन किया कि वो मुझे एक अवसर दे रहा है। अनेक भव सय सहस संचयम, हजारों लाखों भव से संचित जो कर्म है उनको उदीर्ण ना कर करके क्षय करने का अवसर मुझे मिला है। वही गस कुमार ने किया, वही मुझे भी करना है और आपको भी करना है। तुम्हारे भी जीवन में, मेरे भी जीवन में, भगवान महावीर के जीवन में भी, गणेश कुमार के जीवन में भी, ये होते ही होते हैं। बस उसका उपयोग करना है कि उससे डिस्टर्ब होना है। जो उसका उपयोग कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है, जो डिस्टर्ब हो जाता है वो दुखी हो जाता है। जिन जी के लिए रात को पोजिशन पर चल रहा है 9 से 10, 15 साल से लेकर तो 29 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है। कल बहुत मजेदार सेशन हुआ। अब पूरी बात तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि 1 घंटे की बात है। एक ने पूछा बहुत ऑब्स्टिकल्स है क्या, आप भी क्या बोलते हो? हेलो, घनी अड़थड़ा है वाला साहब। मैंने कहा नो ऑब्स्टिकल्स, नो ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल इज माउंटेन। बोलो, ऑब्स्टिकल इज माउंटेन। इफ यू क्लिपिंग यू गो माउंट, और तू वही रुक गया तो ऑब्स्टिकल है। पहाड़ी चोटी पर भी पहुंचाती है और पहाड़ी तुम्हें रोक भी लेती है, पहाड़ी रोकती भी नहीं चोटी पर भी नहीं पहुंचाती है। तुम चढ़ जाते हो चोटी पर पहुंच जाते हो, तुम रुक जाते हो तो ऑब्स्टिकल इज ऑब्स्टिकल, नो ऑब्स्टिकल इज, और जितना ऑब्स्टिकल बड़ा उतना कैलाश पास में है? क्या जोर के रास्ते पर लगने वाले पहाड़ी पर चढ़ करके तुमको थोड़ा कहेगा कोई एवरेस्ट सर कर लिया है ना? जब हिमालय को सर करोगे तभी कहेंगे कि एवरेस्ट चढ़ गया है। तो सच सच बताओ, ट्रेकिंग करनी तो टेकड़ी के करनी, वसंत टेकड़ी के करनी? नगर वालों को पूछता हूं, वसंत टेकड़ी की करनी कि हिमालय की करनी? हाँ तो चला आ जाओ फिर, है ना, आ जाओ, है ना। तय नम से तय कह न मनते तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठ नेमिम एव यासी सेनम भन्ते पुरिसे मय कहम जानी होवे। तैनम अरह अरिठ नेमि कन्हम वासुदेव में वयासी जीनम कन्ना जीनम कन्ना तुम्हम बारवये नैरे अनुपवि समानम पासिता ठिये चेव ठी भेनम कालम करे सही तैनम तुम्हम जानित जासी ये सनम से पुरी से। तुम्हें और मुझे देख करके कोई व्यक्ति चलते चलते रुक जाए, चेहरे पर की मुस्कान गायब हो जाए, तो समझ लेना किसी जन्म का सुमिल ब्राह्मण आया है ना। तुम्हें और मुझे देख करके उसको लग जाए, अरे यार कहां ये बीच में आ गए, इनको देखना में पाप लगता है, तो समझ लेना उसका क्या हो गया, स्थिति भेद हो गया है ना, उसका स्टेटस माइंड डिस्टर्ब हो गया है। मैं अंतगण श्रुत देव को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना वो बता रहा हूं मैं आपको। तीर्थ शशि मुझे मन से धन्यवाद दे रहा है, थे देवो के नहीं देव उन्हें मालूम नहीं, तीर्थ शशि मन से धन्यवाद दे रहा है देवेंद्र बाबू, अब के थोड़ो सके नहीं देव
1: मन से धन्यवाद है,
0: इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि वो हर महीने वो भादवा सुदी तेरस से लेकर सुदी उदय तेरस से लेकर सुदी पंचमी तक अंतंगण सूत्र की आराधना कराता है ऑनलाइन। जब मैंने कहा ना कि इस बार मैं आराधना कराऊंगा, थोड़ा सा उसको अंदर में वो नमो अरियंतानम हो गया था है ना, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसको लगा नहीं अच्छा किया हमारा सामने
1: बहुत
0: अच्छा। ये सोच रहे वे प्रवीण ऋषि जरा शुरुआत में करे ना तो कि नहीं सुहावे को नहीं
1: हारडा शिर को हारडा शिर को आवला शिर को शुरुआत ने कल पर नंतर तो मिठो मिठो लागे
0: चलो और थोड़ी मजा करें। अभी हम एक दवा का प्रयोग कर रहा हूं वो मुझे देखता था, मैंने कहा मैं तेरी आई मिल चल रही है, तेरा पारना होने दे फिर तुझे चखाता हूं, और उसने चखी और वो मुझे पूछे, उसने तो नाक दबा करके गेट ली सीधा नाक दबाया मिटक कर ली, और मैं अपना मस्ती से जिसके गुलाब जामुन खा रही हूं वो मुझे पूछे कि थे इस मस्ती से नहीं तो आराम से नहीं एक एक घुट किसके ले सको, एक एक सिप किसके ले सको, जो उसको बताए वो तुमको बताता हूं। मैंने उसको एक ही कहा यदि मैं इसको डिसलाइक कर करके लूंगा तो मेरे अंदर में पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा, मैं इसको प्रेम से श्रद्धा से लूंगा तो मेरे अंदर प्रेम से और श्रद्धा से काम करेगा। समझ में आ रही बात, लेकिन मुझे पता है जो मैं ले रहा हूं तुमको भी दूंगा ना तुम भी उसके जैसा ही मुंह करोगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं जुबान में आने जुबान पर आने वाला करेला जैसा प्रेम से खाता हो वैसे जिंदगी में आने वाले करेले भी प्रेम से निगल जाओ। मंगल भावना भाव मेरे लिए कि मैं जिंदगी के करेले भी प्रेम से निगल जाओ, यही तो परेशान पर्व है। परेशान पर्व है क्या, परिश्रम पर रहे, और मैं कल शाम से प्रयास कर रहा हूं कल शाम से प्रयास कर रहा हूं। क्या करो कि मेरे पास तुम्हारे पास जैसे होम मिनिस्टर है ना, कि वो तुमको करेले मीठे खल के खिलाते हैं, यस और नो? हाँ, कैसे खिलाते हैं? बिल्कुल ऐसा करेला बना देते हैं, ऐसा करेला बना देते हैं, या तो मीठा बनाते थे या इतना मसाला डाल देते हैं तो मसाले के बीच में वो करेला कब नीचे उतर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन याद रखना, थाली का करेला तुम्हें कोई मीठा बना करके दे सकता है, थाली का करेला तुम्हें कोई मसाला वाले बना कर दे सकता है। जिंदगी के करेले जैसे वैसे ही लेने होते हैं, उसको कोई मीठा बना करके देने वाला वो स्वयं को ही मीठा बनाना होता है। क्यों गसकुमाल का जिक्र कर रहे हैं, क्यों गसकुमाल की आराधना कर रहे हैं कि जहरीला जहरीला करेला, लेकिन चेहरे पर सिकन लाए बिना ऐसे निगल गए कि मानो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। यही पजसन कप की आराधना है। और ये तुम्हारी और मेरी हो जाए तो गुरुदेव के पुण्य भूमि में किया हुआ चौमासा और पजसन मेरा सार्थक हो जाए, मेरे जीवन में हो जाए, मेरे भावों में हो जाए। तो जहां चतुर्मास करने के लिए मैं तड़प रहा था, वो तड़पन सार्थक हो जाए।

నమో గయసుకుమాలస్స నమో గయసుకుమాలస్స నమో గయసుకుమాలస్స నమో గయసుకుమాలస్స ఏక అనూఠా అధ్యాయ एक अनूठी साधना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पुरुषना पर्व की आराधना करने का संघीय रूप में अवसर मिला। आप भी भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं कि संघीय आराधना जब होती है तब संघ शक्ति जागृत होती है। बहुत अपने भाग्य की सराहना करिए कि जैन धर्म को मानने वाले परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, जो तुम्हें महाभारत नहीं सुनना है, अंतगढ़ सूत्र सुनने का अवसर मिलता है, रामायण नहीं सिद्धायन सुनने का अवसर मिलता है, जो सिद्ध बनाता है। और आज का पन्ना तो अंतगण सूत्र का शिखर पन्ना है। इसके बाद कोई अंतगण सूत्र में वरिष्ठ आएगा तो अर्जुन मालिक आएगा, इसके बाद कोई पावन गंगा आएगी तो अयवंता की पावन गंगा आएगी। श्री कृष्ण वासुदेव ने गस्कुमाल के लिए भगवान अरिष्ट नेमि के दर्शन के लिए जाते समय एक सुंदर सी लड़की को देखा जो खेल रही थी। ये श्री कृष्ण वासुदेव है, जो व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की क्वालिटी देखते हैं। और व्यक्ति की क्वालिटी देख करके उसको चुन लेते हैं। देखा और लगा कि ये जो है लड़की, जिसका वो नाम भी नहीं जानते थे, जिसके मां बाप को भी नहीं जानते थे, लेकिन लगा कि ये लड़की गस्कुमाल के लिए परफेक्ट रहेगी। ये अभी खेल रही है, पर इसको ट्रेनिंग दे करके गस्कुमाल के योग्य बनाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने अपने जो परिवार के लोग थे उनको कहा कि इस किसकी ये पूछो और उससे इसकी याचना करो गस्कुमाल के लिए। गए परिवार वाले, वो सुमिल ब्राह्मण के बेटी सुभा, कहा कि श्री कृष्ण वासुदेव अपने छोटे भाई के लिए इसको चाहते हैं। सुमिल ब्राह्मण को तो आसमान हाथ में आ गया, एक ब्राह्मण की बेटी और वासुदेव के घर की रानी बन जाए, किस बाप को खुशी नहीं होगी। बाप ने कहा ले जाइए। और उस समय की परंपरा थी बड़े घरों की, आज भी बिरला के परिवारों में ही

चलती थी, आप चलती कि नहीं चलती पता नहीं मुझे, बजाज और बिरला परिवार में ये परंपरा चलती थी। पंजाब के कई परिवारों को मैं जानता हूं कि उनके परिवारों में ये परंपरा चलती है कि सगाई होने के पहले, शादी होने के पहले, जिससे सगाई करनी है, जिससे शादी बहू बना करके लाना है, उसको पहले अपने घर में ले आते हैं। इसलिए कि एक बार तो घर देख ले, घर की रीति नीति सीख ले। आगम में दो अंतपुर जाते हैं, कितने? एक जाता है होम मिनिस्टर का, रानियों का, और एक जाता है जो रानियां बनने वाली उनका कुमारी, वहां रख करके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो सोमा को ट्रेनिंग के लिए लेकर के आए और उधर अरिष्टनेमी के दर्शन के लिए पहुंचे। अरिष्टनेमी के दर्शन करे, प्रवचन सुना, साथ में गस कुमार भी था। श्री कृष्ण ने तो प्रवचन सुना, दर्शन करे, उनका टारगेट उतना ही था। आपका टारगेट क्या है? उतना ही है ना, आए सुने समझे और फिर चले पुराने रास्ते पर। लेकिन गस कुमार ओपन माइंड गए थे, ओपन माइंडेड गए थे, और गस कुमार डायमंड की खोज में था, ग्रेट की खोज में था। जो ग्रेट की खोज में रहते हुए ग्रेट बनते हैं, गुरुदेव की भाषा में बोलू तो गंदी मक्खी कभी गुलाब को नहीं खोजती है, गंदी मक्खी कभी गुलाब को नहीं खोजती है, वो तो वही जाकर के बैठती है जहां गंदगी होती है। फूलों की खोज में जो चलती है उसको मधुमक्खी कहते हैं, फूलों की खोज में जो चलती है उसको मधुमक्खी कहते हैं, और जिन शासन में साधु उन्हीं को कहा गया, जिन शासन में साधु उन्हीं को कहा गया जिनकी जीवन शैली, जिनका कैरेक्टर, जिनका एटीट्यूड, जिनकी मेंटेलिटी मधुमक्खी की होती है। महोगार समा बुद्धा जे भवंति अनिश्य नाना पिंड रया दंता तेन उच्चंती साउनो। जो मधुमक्खी बनकर के जीते हैं, जो गुलाब की खोज में रहते हैं, जो फूलों की खोज में रहते हैं, जो अच्छाई की खोज में रहते हैं, वे संत हैं। बाकी गंदी मक्खियां तो गंदगी पर ही जाकर के बैठेगी, आपके पूरे शरीर में जहां जख्म होगी, जहां मवाद होगा वही जाकर बैठेगी, जहां सफाई वहां बैठने का सवाल ही नहीं हो उसका। और गस कुमार तो गस कुमार, और देखा अरिष्टनेमी जैसा उसका लगा नहीं, बस इसका रस भी ना है। लुप्त हो गया अरिष्टनेमी में, मुग्ध हो गया। अब इसके सामने तो महल फीका है, क्या अरिष्टनेमी का आकर्षण होगा? ना ना देवकी का प्यार याद आया, न वसुदेव का न प्यार याद आया, न वासुदेव का प्यार याद आया। अरिष्टनेमी को देखा और बाकी सब दिमाग से डिलीट हो गए, और कहता अरिष्टनेमी को, तुम्हारा प्रोटोकॉल है, मैं पूछ करके आता हूं मां बाप को, पर रहूंगा तुम्हारे पास। तुम्हें देखा तब और किसी को देखने की हाँ इच्छा नहीं,

आचार्य मानतों कहते कि परमात्मा आपको किसी ने देखा और फिर और किसी को देखने की तमन्ना हो जाए तो उसने आपको देखा ही नहीं, बोले बोले ऐसे कैसे? बोले कोई एक बार क्षीर सागर का पान कर ले तो बंबई के समुद्र का पानी पीने जाएगा क्या? हेलो, वो कब तक जाएगा? जब तक क्षीर सागर का पान नहीं करता है। और प्रभु तो तुम तो क्षीर सागर है, तुमको आंखों से पी लिया फिर और किसी के देखने की तमन्ना? यस, ऐसे गुरुदेव थे ना। गुरुदेव को वंदना करने के बाद और किसी को वंदना करने का? उनका हाथ सिर पर आ गया बस। उनके हाथ सिर पर आने के बाद भी औरों की तुमको तमन्ना है तो समझ लेना तुमने क्षीर सागर में जाकर भी क्षीर सागर का पान किया ही नहीं। गुरुदेव के वरदान मिलने के बाद और किसी के सामने दामन तुम फैलाते होंगे तो समझ लेना कि गुरुदेव ने जब दाम वरदान फैलाए तुम्हारी झोली फटी हुई थी। तुम वरदानों को संभाल करके नहीं रख सके, तभी तो तमन्ना जन्मती है और किसी के पास जाने की। ये भूमि है जहां गुरुदेव के वरदान बरसे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी श्रद्धा से तुम सुन रहे हो मेरी बात से पक्के सहमत हो जाएंगे कि हमको गुरुदेव के अलावा और किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता। अरे धीमे से क्यों बोल रहे यार, है ना? मारो आवाज धीमो है, थको आवाज धीमो कदी कनु हो गया। हेलो, किन किन को गुरुदेव के बाद और किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता? हाथ ऊपर करो। तो बोला ना कि तकलीफ जा रही है। तो इस संवत्सरी के दिन इसको डिक्लेरेशन में बदलना है। ये एक अपना मैनिफेस्टो होगा संवत्सरी का। हर घर पर, हर घर के द्वार पर एक मस्त पैके नेम प्लेट लगाएंगे अपने नाम की नहीं। अरे तुम्हारी ने मेरी क्या पहचान रही? किस झाड़ की पत्ती से? एक नेम प्लेट लगाएंगे, गुरु आनंद। अरे बोलो ना, गुरु आनंद। जिसके घर पर ये प्लेट नहीं लगेगी ना, समझूंगा मैं कि उसको और किसी की आवश्यकता है। और ऐसे घर चुनने मुझे, है ना, कि जिनको गुरु आनंद के अलावा और कोई चाहिए, है ना। सोच रहा ये प्रवीण ऋषि है ना, कहीं ना कहीं नया उद्योग करतो सरे अनिसो कैची में पकड़े, इसो कैची में पकड़े। पर लावन का पे नहीं सोचना तो, है ना। अरे थाने के परेशानी होती उसने तो उन्हें पकड़ो, उन्हीं लायो। मैं तो जहां जाऊंगा वो उद्योग करे बिना तो, और मेरे उद्योग की फैक्ट्री एक ही है। मेरे फैक्ट्री में सिंगल प्रोडक्शन है, तीर्थंकर महावीर और गुरु आनंद। इस दो प्रोडक्शन के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा मेरे फैक्ट्री में दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं आपको। थे कितने ही मांगो तो मिले लागू नहीं। तो कैसे लगता है आपको? इतना धीमे बोल रहे तो थाने वाटे के प्रवीण ऋषि सामने तो बढ़िया बोल रहे, बाद में देखा कहीं करने दो। हाँ बोलो जोर से, यस। हाँ भाई तैयार कर लेना, हाँ कहीं नहीं कहीं नहीं। थे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, गुरुदेव ने संभाले थे। कि टेंशन लो, थाका संभलने से थोड़ा संभलना, गुरुदेव संभाल लेना, डोंट वरी, है ना। उनको याद आ रहे हैं गुरुदेव,
तो गुरुदेव जब याद आएंगे तो पाप आपको काय को देखेंगे, वो गुरुदेव को देखते अंदर मन में, तो तुमको देखना बंद कर दे, तुमको देखते तो फिर वो हरिदास के पास बादशाह अकबर पहुंचा, तानसेन के गुरु थे, और बादशाह ने पूछा कभी मेरी याद आती है क्या, क्या पूछा बोलो। तो हरिदास ने ये जवाब दिया, जिस समय उसको भूलता हूं उस समय तेरी याद आती है ना, जब तक उसकी याद में हो तब तक किसी की याद है? हाँ था ने, जब तक हमारी याद नहीं आवे ना तब तक दुनिया याद आई ना, जब तक गुरुदेव याद नहीं आते हैं तब तक दुनिया याद आएगी, जिस पल गुरुदेव की याद आएगी दुनिया। हाँ तो गसकुमार ने देखा रिष्ट नेवी को, घर आया, मां को कहा, सबसे पहले किसको कहा, वासुदेव साथ में, कुछ नहीं बोला उसको। श्री कृष्ण वासुदेव के साथ गया है पर भाई को कुछ नहीं बोला, सीधा आकर के देव की मां को कहता है, मां मैंने दर्शन करे बहुत अच्छा लगा मुझे, बोले भाग्यशाली तू दर्शन करे, बोले मैंने प्रवचन भी सुना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे प्रवचन बहुत अच्छा लगा, बोले प्रवचन सुन करके अच्छा लगा तो तू तो परम भाग्यशाली। और फिर मां प्रवचन सुना अच्छा लगा, अना अच्छा करने का मन हो रहा है, अच्छा करने का, बोले क्या, बोले अरिष्ट नेमी के पास दीक्षा लेने का मन हो रहा है, ये तो वाक्य सुनियो, देवकी ने तो चक्कर आए ने गिर पड़े, दर्शन करे अच्छो है, प्रवचन सुनियो अच्छो है, प्रवचन अच्छो लागियो वापस सुनाने जा, दीक्षा रो नाव लियो बेहोशी हो गयो, तो जगाया उसको, जगाने के बाद तो जो रोना धोना शुरू हुआ पूछो मत। ये की गए एक मामला में कंपटीशन लेने देख जो थे, किसमें बोली महाराज सामने दीक्षा मत ले, घना लाड से घना प्यार से घना तमन्ना से थने पायो है, थारा बिना मैं जिंदा नहीं रह सकू, मैं नहीं रिवला जाना दीक्षा ले। अंगस कुमार ने पूछा मम्मी गारंटी कि तू मारा पीले जाइला, कई माना मैं भी थारा पीले जा सकू, कोई गारंटी है? बोले नहीं, कौन गारंटी दे सके, अठे कोई गारंटी है, कौन पीले जाइला नहीं, धन्य माना में यार घना अच्छा थे। फिर देवकी ने कहा तो घनो कुमाल है, सुकुमाल है, बहुत लग्जरी लाइफ जगह है, तो घनो सुकुमाल है, थारी स्किन घनी पतली है। गस कुमार ने कहा मम्मी तू बॉडी कने मत देख, मारी आत्मा घनी मजबूत है, ये सगड़ो मैं देखने आया रहो, भोगने आया रहो, बहुत समझाया लेकिन कोई तीर्थन करके चक्कर में आ जाए तो उसको फिर कोई चक्कर में ले सकता, बोलो ना, ले तो मतलब वो तीर्थंकर का चक्कर में अजन आया रहो को नहीं, एक बार किसी को तीर्थंकर की नजर मिल जाए तो फिर दूसरे की नजर उसको लगती ही। वासुदेव के पास समाचार गए, वो दौड़ा दौड़ा आया, गले मिला, बैठाया पास में, बोले क्या कर रहा रे, मैं हूं तो काय को चिंता करता, तुझे किस बात की कमी है। उसने देखा वासुदेव के तरफ, बोले एक प्रॉमिस करो कि तुम्हारे बाहु छाया में रहते समय मौत मेरे पास नहीं आएगी, प्रॉमिस करो तो मौत को रोक लोगे। वासुदेव बोले भाई वो तो नहीं हो सके,
बोले जब उससे नहीं बचा सकते तो बाकी की बात तो फालतू की बने। देखा कि अभी कोई अपनी दाढ़ इसके सामने सीजने वाले बोलो थे, इस घनी बार बोलो थे हमारे लिए कि प्रवीण ऋषि ने अपनी दाढ़ सीजने वाले हाँ बोले बोले एक दिन राजा बन जा। क्या एक दिन थे राजा देखने के? बोले ठीक है एक दिन देखने के लिए बन जाऊं। वो बन गया राजा, सिंहासन पर बैठा। बोले कई करा? बोले जल्दी से नावी ने बुलाओ और हमारी दीक्षा की तैयारी करो। पहुंचा अरिष्ट नेमी के पास, अरिष्ट नेमी ने दीक्षा दी। देवकी ने एक बात कही उसको, देवकी ने एक बात कही, बड़ी गहरी बात कही उसने। मेरा उस वाक्य को याद करो, मां दिल से कोई तमन्ना करे, मां दिल से कोई तमन्ना करे तो बेटा उसको कभी अधूरा रखता नहीं है। दिल से तमन्ना चाहिए। और देवकी ने दस कुमार को एक ही बात कही, वापस कोई मां ने दुख दे जे मत दी। कही वापस किसी मां को दुख, गस कुमार समझ गया कि मां को दुख नहीं देना मतलब जन्म नहीं लेना, जन्म नहीं लेना इसका मतलब मोक्ष में जाना है। और मैंने कल एक वाक्य बोला था, याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, जिनके वचन देने में और वचन पूर्ति में अंतर होता है वे कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। वचन देते ही जो वचन पूर्ण करते हैं वे मंजिल पर पहुंचे बिना कभी रहते नहीं है। और गैस कुमार दीक्षा देकर के लोग गए,

0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है।
2: नमस्कार, माझं नाव आरुष प्रसाद बेडेकर। तुम्ही ऐकत आहात बदलत्या नगर से लोकमाध्यम रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकुलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।